विषय निके गंभीर रूप में लिया अनुसंधान अघि प्रणाली को जिला प्राधिकारी का प्रमुख नरेन्द्र कुमार ने बताया सरकार से बालिका का परिवार को कानून धारणा को सजा को व्यवस्था कड़ा बनाने विषय में छलफल इस अनुसार कानून में विधिवार कसुर सजाए संबंधी व्यवस्था को पुनरावलोकन करने सरकार ने कानून बढ़ाने सुझाव सहित प्रतिवेदन तैयार पार्द जिसका कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्रालय ने

कांग्रेस पार्टी ने कपावत अपील कर दी गई कुमार कुमारी स्वास्थ्य मंत्रालय इनमें से थारूलाई आर्थिक मामले स्थायीता मंत्रालय कृष्णा कुमार थारूलाई कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मंत्रालय को चिन्ह दिने प्रस्ताव गरेको छ। नयाँ नियुक्त मन्त्रीका

0: सब कटेपछि नियमित स्वास्थ्य जाँच गरौँ।
1: चिनो पदार्थ, माछा मासु कम खाऊ। खानामा सागपात र फलफुल खाऊ।
0: मद्यपान र धुम्रपान सेवन नगरौँ।
1: स्वस्थ रहौँ, सुखमय जीवन बिताउँ।
2: रेडियो प्रभाव एफएम द्वारा जनहितमा जारी सन्देश।

0: मैले खुल्ला कुरा गरौँ, समाधान लागू पदार्थ होइन, लागू पदार्थबाट टाढा बसौँ, स्वस्थ र उज्यालो भविष्य बुझौँ।
1: रेडियो
2: जे कोई यहाँ ऐसा था कि जो रास्ता यहाँ सिक्कि तुमने रास्ता नहीं हो, बढ़िया फिर हो, बहुत बढ़िया चीज हो।

0: बीमारी हो रही है, उल्टे जाए, बढ़ते जाए, 20-25 दिन बाद जाए, वो मर जाए, मर जाने का और रेट पहले तो डायरेक्ट नहीं मर, वो मर गिन जाए, फिर अपना मर गिन 20-25 दिन आप भी गिना रहे थक जाए, मर जाना गिन जाए, तब ड्रेसिंग कई खाए। तो कई दिन में ध्यान हो जाए,
1: 20-25 दिन
0: मजा समय में आएगा।

की दुआ सीखनी, बाकी मतलब बनने सुखता और हर चीज सीखनी, हर फल सब सीखनी। हमने सब सीखते पहले तो हमने पूरा करना है की हमने कहा सीखी, तो हमने बहुत कुछ हमारे गाँव में रहकर मैं तो थोड़े सीख रही हूँ, लेकिन हमार जी तो तुम कौन सीखा है, अब तुम जितने और बहुत दिन का तुम्हें रेडियो गुजारा है।

0: tasarısı ne tam bulunsa bu soruyu koyuyor.
1: मौसम और अचानक परिवर्तन विषय में अभिलेखों से स्थानीय कार्यसंकल मौसम पूर्वानुमान तथा विपद संबंधी सूचना में ध्यान दिया वो आवश्यक पूर्व तैयारी अवस्था में रहा और जितने बार स्थानीय तह में समुदाय को संबंधित निकाय बीच समय में सूचना आदान प्रदान समन्वय विषय पर से संभावित विपद में सूचना आदान को क्षति कम कर सकना मतलब बात
2: Thank you.

0: समाज का अभिषेक हमारा संदेश अपना स्वागत भारत संक्रिय हिंदू संध्या में कुमार रेडियो प्रोग्राम एफएम पर दिया से उत्पादित हमारा संदेश पर दिया का साथी एफएम राजापुर बांकीपुर प्रतिपुर एफएम कोलपुर और रेडियो खाते मारू जानकी गांव पालिका बांकी मसे प्रसन्न प्रसारण जिला हमारे संदेश पर खरीदारी मुख्य मुख्य समाचार का शीर्षक मसे बाल कल्याण प्राधिक उनकी मसी का इस सुधार कला का विपावक अंतर क्रिया निर्मित निर्माण निर्णय करती प्रया ताल में बाल अधिकार समिति का जारी लिंज प्रया ताल में त्रिपत्र प्रदान 22 पॉइंट प्रकट संकलन बर्तिया में छह महीना से एंटी रेबीज वैक्सीन का अभाव प्रीमियम शास्ती लुम्बिनी में 3 नवा मंत्री लेना सफल वो सरकार घरेलू श्रम अनियमन वो औपचारिकरण कर्नाटक में आग बहुत लड़क मंत्री यादव बताई
1: बास्कई नगर पालिका गांव स्थित बाल कल्याण प्राथमिक विद्यालय ठुंगी में शिक्षा स्तर सुधार कला का विभावक कहिए विद्यालय विद्यार्थी का शिक्षा स्तर सुधार तथा असल अभिभावक ग्रहण कसिक कर सिद्धाई करना विषय में अभिभावक बीच सदस्य तथा गुनासो सुनाई कार्यक्रम कही रखो
0: जनावर का कटाई घटना और बिग्रे से माप अनुसार फैक्सीना आपूर्ति में विभिन्न भर्तियां में हरेक दर्शक को अभाव फैना करवा भर्तिया को बढ़ियातर गांव पालिका में बिना रक्तदान कार्यक्रम निम्जल्दा राजयोगिनी डाडी डॉक्टर प्रकाश मणिजी को उन्नीस सौ पुण्यतिथि का अवसर में आयोजित रक्तदान कार्यक्रम में वाइस पेंट्रल का संकलन जिला को रगत का भावनात्मक रूप से जान जाने पुरस्कार उद्देश्य ने रक्तदान करना आयोजक जनई लगा ब्रह्मकुमारी सूर्य विश्वविद्यालय एवं राज्य प्रशिक्षण केंद्र प्रशासन महीना पोखर पर्यटन उद्योग वाणिज्य संघ महीना पोखर का संयुक्त आयोजन तथा नेपाली कला सोसाइटी का शाखा बढ़ियाता लाइन स्कूल ऑफ बढ़ियाता इलाका प्रहरी कार्य महीना पोखर सशस्त्र प्रहरी दल पर्यटन सीमा सुरक्षा गण का सहकार्य में आज पर्यटन उद्योग वाणिज्य संघ का कार्यालय में रक्तदान कार्यक्रम कार्यक्रम में बढ़ियाताल गांव पालिका तथा सिंह मानी दिल पार्टी अठारह फैलाओ बढ़ियाताल उद्योग वाणिज्य संघ का संस्थापक अध्यक्ष बालकृष्ण रानी छाने विश्व खेला रक्तदान कर नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी लगाई बाईस जना रक्तदान कर रक्तदान सहभागी प्रमाण पत्र समेत वितरण कर महीना पोखर से पत्रकार ज्ञानेन्द्र पोखरियल खबर पठाइए प्रत्येक स्थानीय तह में नगर प्रमुख अध्यक्षता में विपद व्यवस्थापन समिति गठन विपद व्यवस्थापन समिति विपद ऐना तैयारी करना विपद का समय में उद्धार और राहत देना तथा विपद पार्श्व पुनर्स्थापना और पुनर्निर्माण करना का प्रयोग बांसवाड़ी नगर पालिका विपद संबंधी सूचना तथा विपद व्यवस्थापन का प्रणापूर्व तैयारी प्रशिक्षण दिनहरूबाट बांसवाड़ी नगर पालिका का विपद फोकल पर्सन सुशील थापा 80 को बताई
2: था।

उसी अधिकार सुधरा अनाथ के रखी सचिव अंतर्षेय को पसंद करा अनाथ पत्र लाइक अंतर्षेय बनाऊं सा वह अनाथ सांसी बैठी पर ससमाई सा